टोपे की जी यो डेर टैलेंटेड और हाई क्वालिफाइड जमंग शो दे डेम क्योरी टोपे के डेर हाई क्वालिफाइड टैलेंटेड यंग और एनर्जेटिक लेक्चरर हेना फेदा दे टाइम की प्रोग्राम हो रही। थैंक यू सो मच द कंप्यूटर पर मैदान की द टेक्निकल और द कंप्यूटर चिकम दे फदे फील्ड के महारत है दीजिए। शुक्रिया अदा कीजिए हेना फेदा। थैंक यू सो मच यो दुनिया मनाना।

बिल्कुल जी जमुगा साथ चिकम दे और उस्ताद तर साथ कमी की जी वक्त तर वक्त जमुगा टाइम चिकम दे कमी की तासो बिल्कुल रातले छे तासो द खपल अजीरी चिकम दे बिल्कुल मंग सारा कंफर्म के जी बिल्कुल आओ जी जरा गले मौजमा प्रोग्राम मौरिदले जमा अजीरी ओला कहो जी सही दा

बेलडोना जाफरानी वन नाइट क्रीम डबी के डबे डबी के डबे डबी के डबे डबी के डबे और बस व्याम डबी की डबे ग्रानो द्रनो खोगो मिने वालो लॉन्च की गई बल्कि सासुदला की सुमरम कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल स्टोर दी बेलडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम तो हम जो सिर्फ और सिर्फ दगा दावल री जस्ट वन नाइट यानी जस्ट वन नाइट सिर्फ योश पाद बेलडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल उल्ली द मखद खुला मखद स्पिन वाली असल नूम बेलडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम बेलडोना जाफरानी स्क्रबी फेस वॉश दुजुन दिस विच दागी कीमत नहीं हुई जी बल्कि दागी कदर बे इंतहा डर जात हुई जाफरान पागा नायाब उप कीमती सुजुन की यो कीमती तोहफा दा ओ कचरी दा चाल प सही लाजमानी और शुद्ध सु दागी ना वाकी सफायदा तेरे नोचे देगी जी द सोनू कालो ना जाफरान द खाइस द खुशबू और दर्द से सुनो द इस्तेमाल दोबारा तेजन लेगी लेकिन जदीद साइंस पर नंदवर की जाफरान सिर्फ द खुशबू दोबारा ना सिर्फ द खाइस दोबारा ना बल्कि द यो कुदरती एंटी ऑक्सीडेंट बतोगा बानी साबित कर दी जाए कुदरती एंटी ऑक्सीडेंट दे जी वो कचरी सही ला सुन लोअर शी एंटी ऑक्सीडेंट वे लेकी सता एंटी ऑक्सीडेंट स्किन च देनो दो फ्री रेडिकल छोड़ दो लेगी द आगे ने चुकम नुकसान तौर को लेगी द आगे ने मुकम्मल बच साथी स्किन मुकम्मल तरोताजा साथी सेहतमंदी साथी और द खाइस और नवे एहसास तौर के जी देओ डीर कीमती सीज इस्तेमाल मा खुद तो गोरे दवे लेगे ना जो कीमत गोरे दी डीर ज्यादा बेलडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम दी कीमत बेलडोना जाफरानी व्हाइटनिंग फेस वॉश या बेलडोना जाफरानी स्क्रबी फेस वॉश जस्ट वन नाइट में इस्तेमाल हुई बेला दादा दाता सु दुकुम दुकानदार ना अखले कनन और दुकानदार सर बता सको जी अगर दुकानदार सर बा तासु दगा डबे चे मुतरे ने कलर आवांग सु द डबी ने बता सर कट कई जी और दी डबी के बकम सेट कट कोई दी डबी के बता सु गोरे जी दा डबे अड़ो मराड़ो मा दा डबे द दो से डुन नकुलावी गन ता सुकले उ गोरे दा डबे चकरे ता सुदा कुलो की दी डबी की दनना संग चमा जिक्र कुछ डबी की दनना यो डबे दे अगर डबी ने बडबे रउबासी ओ दनन चकम डबे और के प्रोत दे अगर डबी की बदनन ता सु सौ के जी दी डबी की दनन यो डबे दे ओ अगर डबी की दनन कम डबे प्रोत दे अगर डबी की दनन इन मच संग जिक्र कुलो समाडी रु सातु ग्रानो द्रनो खोगो मिन वालो ददी ददी प्रोडक्ट पर बारे की जिदार तो वेले शुमच दी डबी की दनन यो डबे दे डबी की डबे दे डबी की दनन चकम डबे प्रोत दे अगर डबी ने ब डबे रोबा सही औच दी डबी की कम लक द कम चक कागज वाला कम डबे दन डबे बता सु गुरजो ही ना तासु ब दी डबी की दनन चकम डबे प्रोत दे अगर बरा वाली द अगर डबी ने ब द कम च द क्रीम कम डबे दे द बतरे नवाली او چې دې کې دننه کوم ډبې پروت دی په هغې باندې به تاسو دغه لاندې چې کوم دننه زی دی ورکې دې باندې به تاسو خپل نوم د خپل زی نوم بلکې نوم پې مه لیږئ جی صرف سمپلي د خپل چا چې هم موبایل ور باندې ولیکئ او دکاندار سره دا ومه غځې دکاندار ته ور دا ځان سره کېږده جی ولی چې په میاشت کې به دننه دننه مونږه شلو لاکو روپیو انعامات په دې کې تقسیموو جی بیا د

डबी की डबे डबे और बस बिया डबी के डबे जी डबिया डबीना बिल्कुल संभाल के जी. Ladies and gentlemen, this program is brought to you by Belladonna Zafrani Whitening Cream. Belladonna Zafrani Whitening Cream.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

मैं लड़ू ना सी वन नाइट क्रीम डबी के डबे डबी के डबे डबी के डबे डबी के डबे और बस व्याम डबी की ग्रानो द्रनो खोगो मिने वालो लॉन्च की गई बल्कि 710 मेडिक जनरल रानी व्हाइटनिंग क्रीम तुम जो सिर्फ और सिर्फ दगा डबल री जस्ट वन नाइट यानी जस्ट वन नाइट सिर्फ योश पाद बेलाडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल ओली द मखद खुला मखद स्पिन वाली असल नूम बेलाडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना जाफरानी स्क्रबी फेस वॉश दुनिया की बाजू बाजू चीजों ने स्विच दागी कीमत नहीं हुई जी बल्कि दागी कदर बेनते हाँ डेर ज्यादा हुई जाफरान आगा नायाब उप कीमती सुजुन की यो कीमती तोहफा था वो कचरी दा चरता चाल अप सही लाज बानी और शुद्ध सही लाज सुन लो और शुद्ध आगे ना वाकई सफायदा तेरे नोचे देगी जी द सौ नुकालो ना जाफरान द खाइस द खुशबू और द सुजुनो द इस्तेमाल दोबारा तेजन लेगी लेकिन जदीद साइंस पर नंदवर की जाफरान सिर्फ द खुशबू दोबारा ना सिर्फ द खाइस दोबारा ना बल्कि दयो कुदरती एंटी ऑक्सीडेंट बतोगा बानी साबित करे दी जिदा यो कुदरती एंटी ऑक्सीडेंट दे जी वो कचरी सही लासुन लोअर शी एंटी ऑक्सीडेंट वेले की इसता एंटी ऑक्सीडेंट स्किन चिदेनो दो फ्री रेडिकल सोर्दो वेले की द आगे ने चुकम नुकसान तोर को लेगी द आगे ने मुकम्मल बच साथी स्किन मुकम्मल तरो ताजा साथी सेहतमंदी साथी और द खाई से और नवे एहसास तोर के जी दे और डेर कीमती सीज इस्तेमाल माँ खुद तो गोरा दाऊ लेगा ना जी कीमत गोरा दे डेर ज्यादा बेलाडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम दी कीमत बेलाडोना जाफरानी व्हाइटनिंग फेस वॉश या बेलाडोना जाफरानी स्क्रबी फेस वॉश जस्ट वन नाइट भाई इस्तेमाल हुई बेला दादा दाता सु दुकुम दुकानदार ना अखले कनन और दुकानदार सर बता सको जी अगर दुकानदार सर बा तासु दगा डबे छे मुतरे नकल रवांग सु द डबे ने बता सर कट कई जी डबे के बकम सेट कट दा डबे अड़ो मराड़ो मके द दो सेडुन न कोलावी कन ता सुकले उ गोरे दा डबे चकले ता सुरा कोलो की दी डबे की दनना संग जमा जिक्र कुछ

0: best music is here. The rhythm of the valley. The new high.
1: 94 FM.
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
3: दादी रेडियो दिलबर स्तासु दजरावास।
4: स्तासु पल चैनल।

0: के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान। मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैन वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
2: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुल सु बजो पूरे द जनानो तालीम और हम दगशान द द्रु बजो नवाखला तर माखा व पूरे नारिनो तालीम कुदलिशी चिपाहे की कायदा तर्जुमे कुरान, नाजरे कुरान, हिफ्ज़ुल कुरान और द दर्जी उलाना द दौरे हदीस पूरी किताबुना कुदलिशी। ज़ेरे निगरानी मोहतमिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब और नाज़िम साबिर हनफी से। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080। मुफ्ती मोहम्मद नाहिद से कॉन्टेक्ट नंबर 0314-6693-596। नुहुम उस राशे कुल औलाद ला दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरते हम खेस तकड़े मुसरा दाखिली शुरू दी।

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटे।

0: दर्द है या तेरी तलब, दर्द है या तेरी तलब, जो भी है मुसलसल है।
1: नूरे जहां नूरे,
0: हमको मोहब्बत भी उनसे हुई जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं था।

वो मेरा सब कुछ है, बस मुकद्दर ने। अरे काश वो मेरा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मुकद्दर होता। वल वल वल वल वल वल।

0: कभी खुद को मेरी जगह रख,
1: मुझे सताए,
0: कभी खुद को मेरी जगह रख, तुझे तरस ना आया तो छोड़ जाना। जैसे दागी हुई कोई तस्बीह में, ऐसे सांसों के दरमियान हो तुम तो।

0: बिछड़ते वक्त, बिछड़ते वक्त उसने कहा था, न सवाल करना न जवाब मिलेगा, मुझे भूल जाना करार मिलेगा। हम उस मुकाम पर थे, न सवाल किया न जवाब मिला, न भूल सके न करार मिला।
1: मेरे हाथ में था तेरा दिल, धड़कता था दिल में हमारे।
0: बिछड़ते वक्त उसने कहा था, न सवाल करना न जवाब मिलेगा, मुझे भूल जाना करार मिलेगा। हम उस मुकाम पर थे, न सवाल किया न जवाब मिला, न भूल सके।

जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं, जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं।

0: जब ताल्लुक ही तोड़ दिया
1: था दिल में हमारे,
0: फरियाद कैसी मोहब्बत कैसी,
1: ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है, कभी हमने
0: पूछा था कि बता

0: ये है रेडियो दिलबर, आपकी दिल की आवाज, दिल की आवाज।
1: उबावा मामू, ता बोका खुले दे, बोका नोटिस चंट।